ओंकार प्रभु घाटे के स्वर में संत अमृत राय की ये मराठी भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम में अब एक गुजराती रचना प्रस्तुत है, स्वर हसमुख मंडालिया का।

हसमुख मंडालिया के स्वर में ये गुजराती पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीरदास की ये भक्ति रचना।

काकोली मुखी के स्वर में संत कबीर दास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं अंजना चटर्जी से संत सूरदास की ये रचना।

इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

ಪಗ ಲಕ್ಕ

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में ख्याल और सिंधूरा काफी में ठुमरी. आज की कलाकार हैं सबीना मुमताज इस्लाम. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तिमिर रॉय चौधरी और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं चित्तरंजन दोलुई. सबीना मुमताज इस्लाम अपने गायन का आरंभ राग जौनपुरी में ख्याल से कर रही हैं. तो आइए सुनते हैं राग जौनपुरी में ख्याल गायन. कलाकार Sabina Mumtaz Islam.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning, we present Hindustani vocal recitals. Listen to Khayal in Rag Jaunpuri, followed by Tumri Sindhura Kafi. Our artist is Sabina Mumtaz Islam. Accompanying our artist on the tabla is Timir Roy Chaudhary, and on the harmonium is Chittaranjan Doloi.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जौनपुरी में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थी सबीना मुमताज इस्लाम। सबीना मुमताज इस्लाम अपने गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करने जा रही हैं सिंदूरा काफी ठुमरी। तो आइए सुनते हैं सिंदूरा काफी ठुमरी, कलाकार सबीना मुमताज इस्लाम।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये सिंदूरा काफी ठुमरी सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी सबीना मुमताज इस्लाम। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तिमिर रॉय चौधरी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे चित्तरंजन दोलुई। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग नट भैरव में ख्याल गायन। आज ही कलाकार हैं रागेश्री दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो आइए सुनते हैं राग नट भैरव में ख्याल गायन। कलाकार Rageshree Das.
1: You were listening to Khayal in Rag Jaunpuri, followed by Thumri Sindura Kafi. Our artist was Sabina Mumtaz Islam. Accompanying our artist on the tabla was Timir Roy Chaudhary, and on the harmonium was Chittaranjan Doloi. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present Khayal in Rag Nat Bhairav. Our artist is Rageshree Das. Accompanying her is Pinaki Chakraborty on the tabla and Sanathan Goswami on the harmonium. Listen now to Khayal in Rag Nat Bhairav by Rageshree Das.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज की कलाकार थीं रागेश्री दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सनातन गोस्वामी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू ख्याल इन राग नट भैरव। आवर आर्टिस्ट वॉज रागेश्री दास। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज पिनाकी चक्रवर्ती एंड ऑन द हारमोनियम वॉज सनातन गोस्वामी। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत. सुनते हैं ध्रुपद गायन. कलाकार है उस्ताद सईउद्दीन डागर. आपने प्रारंभ में प्रस्तुत किया राग केदार में ध्रुपद. सुनते हैं बोल है भजरे विश्वनाथ. आपके साथ पखवाज पर है वसंतराव घोरपड़कर. तो आइए सुनते हैं राग केदार में ध्रुपद, कलाकार उस्ताद सईउद्दीन डागर.

अभी आपने सुना उस्ताद सईउद्दीन डागर द्वारा प्रस्तुत राग केदार में ध्रुपद, और अब सुनते हैं उस्ताद सईउद्दीन डागर द्वारा प्रस्तुत धमार। बोल है मान तजदे आया है फागुन। आपके साथ पखवाज पर है वसंत घोरपड़कर।

Mana,

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद सईउद्दीन डागर द्वारा प्रस्तुत धमार। आपके साथ पखवाज पर थे वसंत घोरपड़कर। और अब सुनते हैं मालकंस राग में ध्रुपद। बोल है शंकर गिरिजापति, कलाकार उस्ताद सईउद्दीन डागर।

शंकर गिरजा पति शंकर।

अभी आपने सुना उस्ताद सईउद्दीन डागर द्वारा प्रस्तुत राग मालकउस में ध्रुपद। आपके साथ पखवाज पर थे वसंत घोरपड़कर। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं उदय भवाड़कर द्वारा प्रस्तुत राग बिभास में ध्रुपद। आपके साथ पखवाज पर है माणिक मुंढे।

अभी आपने सुना उदय भवाड़कर द्वारा प्रस्तुत राग विभास में ध्रुपद। आपके साथ पखवाज पर थे माणिक मुंडे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिती थी। 24/7 रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित अभय नारायण मल्लिक का गाया राग अहीर भैरव. पाताल में निबद्ध ध्रुपद के बोल हैं, प्रातः समय श्याम सुंदर को रूप निहारत. पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Pandit Abhay Narayan Malik. First listen to Rag Ahir Bhairav. The alap is followed by Dhrupad, which is said to Patal. The words are Pratah Samay Shyam Sundar Ko Roop Niharat. He is accompanied by Shri Mohan Shyam Sharma on Pakhavaj.

0: अभी आप पंडित अभय नारायण मलिक का गाया राग अहीर भैरव सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग तोड़ी, बोल हैं परी आली री। पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित अभय नारायण मलिक। नाउ लिसन टू राग तोड़ी। द आलाप इज फॉलोड बाय धमार। द वर्ड्स आर परी आली री। ही इज अकंपनीड बाय श्री मोहन श्याम शर्मा ऑन पखावज।

0: अभी आप पंडित अभय नारायण मलिक का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। पखावज पर आपकी संगति की थी मोहन श्याम शर्मा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग तोड़ी बाय पंडित अभय नारायण मलिक। ही वाज अकंपनीड बाय श्री मोहन श्याम शर्मा ऑन पखावज। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल. आज के कार्यक्रम में सुनते हैं पखवाज वादन. प्रारंभ में सुनते हैं पंडित रामाशीष पाठक द्वारा प्रस्तुत पखवाज पर ताल चौताल. आपके साथ हारमोनियम पर है राजीव तांबे.

का मोतीलाल है।

だれもいるんだ。

देखिए हमारे भैया लाल जी के घराने का ये धूमकेतु है, धूमकेतु की प्रकार देखा जाए। धूमकेतु धूम धूमकेतु तक तक धूमकेतु धूमकेतु धूमकेतु तक तक धूमकेतु धूमकेतु धूमकेतु तक धूमकेतु धूमकेतु धूमकेतु तक तक धूमकेतु तक तक धूमकेतु तक तक धूमकेतु तक तक धूमकेतु तक तक धूमकेतु तक तक तक तक धूमकेतु तक तक जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर जमकर

अभी आपने सुना पंडित वसंतराव घोरपड़कर द्वारा प्रस्तुत पखवाज पर ताल आदि ताल। आज के कार्यक्रम में प्रारंभ में आपने सुना पंडित रामाशीष पाठक द्वारा प्रस्तुत पखवाज पर ताल चौताल और अंत में पंडित वसंतराव घोरपड़कर द्वारा प्रस्तुत पखवाज पर ताल आदि ताल। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी 24/7 DTH चैनल। भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मिश्र विभाग में ये ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थी निवेदिता बंदोपाध्याय। निवेदिता बंदोपाध्याय अपने गायन का समापन गरा दादरा से कर रही हैं। तो ये सुनते हैं ये गरा दादरा, कलाकार निवेदिता बंदोपाध्याय।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये गरा दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी निवेदिता बंदोपाध्याय।

आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे नाणु गोपाल पात्रो और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन नट्टो। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंचम सवारी ताल में तबला वादन। कलाकार हैं विभा संघाई। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप पंचम सवारी ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे विभा संघाई। आज आपके साथ हारमोनियम प्रसाद दे रहे थे रतन अट्टो। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to the tabla in Pancham Savari Tal. Our artist was Bivash Sanghai. Accompanying him on the harmonium was Ratan Notto. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आपका स्वागत। सुनते हैं सारंगी वादन, कलाकार है पंडित राम नारायण। प्रारंभ में आपने सारंगी पर प्रस्तुत किया राग मारुबिहाग, सुनते हैं विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सारंगी पर राग मारू बिहा। कलाकार थे पंडित राम नारायण। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं सारंगी पर राग गुजरी तोड़ी, कलाकार पंडित राम नारायण। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।

श्रोताओ, अभी आपने सुना सारंगी पर राग गुजरी तोड़ी। कलाकार थे पंडित राम नारायण। आपके साथ तबले पर थे सुरेश तळवलकर। आज के सारंगी वादन के कार्यक्रम में प्रम में आप सुन रहे थे राग मारुभिया और अंत में आपने सुना राग गुजरी तोड़ी। कलाकार थे पंडित राम नारायण। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है पखावज वादन. कलाकार है महंत विजय रामदास. सबसे पहले आप पखावज पर चौताल प्रस्तुत करेंगे. आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र.

जय शिव शंकर जय प्रलयंकर जय अभयंकर शीर्ष त्रिपुंड जयति करुणाक अंग भस्म अर्धंग संग धर गरल कंठ धर फणि धर शशिध जटाजूट धर मध्य गंग धर कर त्रिशूल धर जयति त्रिपुर वीर भद्र गण हर विदंत सुर सहित मुनीस मनीष करत जय धक धक धारिंदा धारिंदा धारिंदा जय जय मन मधारि धक धक धक ज्वाल माल आशुतोष त्रय नेत्र कृपाधर चरण शरण नित ध्यावत गौर वरण भुज केन्द्र माल अविनाशी काशी के बासी कैलाशी तुम पार्वती पति नित नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नम नम जय जय हर

धकड़ा धकड़ धागते टेकर धकड़े धागते टेकर धान कत नाग टेटे थेटे धागते टेकर धान कत गिरिग धान क्रान क्रान गिरिग धान क्रान क्रान गिरिग धान क्रान क्रान नाचत हर क्रोधित तने भवकत ज्वाला कर मुंड माल नव चंद्र बाल चमकत त्रिशु कर बाजत डमरू डमक डमक डम डम डम डम डम फड़कत अधर गरल पन्नक बुपकारत आग निरख निरख कांपत त्रिभुवन गंधर्व देव सुर नर मुनि दादा जल तल नव काहत शरण युगल पद पंकज नगपत शिखर कांप रहावत धरल धरल द्राम धरल धरल द्राम धरल धरल द्राम कुपित रुद्र गण दक्ष के घेरत संतावत तोरी फोरी मख खम्ब सत ही पुनि अम्ब अम्ब कहीं चौंती सीधा यज्ञ ध्वंस करी करत विपुल हुंकार उठत बारिद प्रलयंकर दामिनी दमकत कड़कड़ा वज्र क्रांत धा कत्ते टे टे टे धा कत्ते क्रधा कटे क्रान क्रान क्रान क्रान त्रिकृत कृता त्रिकृता क्रांत धा क्रांत त्रिकृत कृता त्रिकृता क्रांत धा क्रांत त्रिकृत कृता त्रिकृता क्रांत धा सती भस्म ले अंग अंग लपटावत शंख लोहित लोचन नाचत तांडव धा कृतक धुम कृतक तक्रां तक्रां धा कृतक धुम कृतक तक्रां तक धा कृतक धुम कृतक तक्रां तक्रां धान धिकट धा त्रिकृत धिक धा

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर चौताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया पखावज पर ताल धमार। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।
1: धागिन धागिन त्रिकृतकता त्रिकृतकता धित धित धे धे धे कृतहिता धेता धल धल धल धल धिलांग गतान कृता ट धुम कृतकता धृकृतक धे धे धक टे किट धागे ते टे कति टे धा कृतक त्रिकृतकता त्रिकृतक त्रिकृतकता धा झम के झू मत सुंड फेरत क्या मूर्ति गजाननम त्रिकृतहित धे धे धेत गणपति बाल लाल विशाल रा पुंड्र धग धग ज्योति जग मग धधक धक धक धधक धक धक जेति जय शंकर सुमन एक दंत मूसक वाहनम जय सकल कल्याण प्रद प्रभु धागिन धागिन।

बम बम शिव शिव अगर बम डिम डमरू डमक डिम डिम डिम बाजत डिम डिम डिम डिम टिके डिम डिम धम कर धम कर धम कर धम कर धम कर धम कर धम कर धम कर बम बम उपकार कर फणि धर भुजंग सिर धर ति धर ति धर धर धर धवल धार गंगा छब धर ति धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर जटा घटा महचंद्र छटागिरी धकट धा धागिरी त्रिपुंड राजे मुंड वक्षस्थल साजे कर्तृशूल चम चम चम चम कत भरत सबार मार मदमर शांत स्वरूप अनूप सकल सुरभूप मुकुटमणि ध्यान धरत कल्याण कर उतरत मुनिगन नित धा धा दिंता धा गृधान धगत टिक्र धकट धग धान दान धगत टिक्र धान बंभूला बंभूला बंभूला बंभूला धान दान धगत टिक्र धान बंभूला बंभूला बंभूला बंभूला दान दान धगत टिक्र धान बंभूला बंभूला बंभूला बंभूला।

अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर धमार ताल। आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे पखावज पर बजाए झपताल से। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीजीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर झपताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्र। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मेघ में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित कत झपताल में और मध्य लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a santoor recital presented by Bipul Kumar Roy. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak. Bipul Kumar Roy first presents rag Megh, in which you will hear the alap, jod and jhala. The vilambit gat is set to jhaptal and the madhyalaya is set to teen tal.

0: अभी आप विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मेघ सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। और लीजिए अब सुनिए राग मालकौंस। मध्य लय और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग मेघ। विपुल कुमार रॉय नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग मालकौंस, इन विच यू विल हियर द मध्यलय एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मालकौंस सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग मालकौंस वी कम टू द एंड ऑफ द संतूर रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय श्री विपुल कुमार रॉय। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री विनोद पाठक। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रतिभानुजी देशपांडे की इस भक्ति रचना से, जिसे गाया है अनुराधा मराठे ने।

अनुराधा मराठे ने गाई प्रति भानुजी देशपांडे की ये भक्ति रचना अभी अपने नी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत बहिणाबाई रचित ये भक्ति रचना जिसे गा

रघुनंदन पणशीकर के स्वर में संत बहिणाबाई की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। संगीतकार थे रविंद्र खासनीस। कार्यक्रम में आइए अब एक पारंपरिक भक्ति रचना जिसे प्रस्तुत किया है वीणा भक्ति मंडल ने।

वीणा भक्ति मंडल द्वारा प्रस्तुत एक पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में, रचयिता हैं संत तुकाराम महाराज।

संत तुकाराम महाराज ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी श्रीकांत पारगावकर के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पुष्पा रानड़े के स्वर में संत निळोबा राय की ये भक्ति रचना।

संत निरोबा राय की भक्ति रचना अभी आपने सुनी पुष्पा रानड़े के स्वर में। कार्यक्रम की अग्रिम भक्ति रचना है मनोहर सबनीस और सहकारियों के स्वर में।